समीने करम, आज की महफ़िल की इब्तिदा हम एक ऐसी खूबसूरत हमद से कर रहे हैं जो इंसान को अपने रब की कुदरत, रहमत और मौजूदगी का एहसास दिलाती है। तो आइए अपने दिलों को नरम कीजिए, सोचों को दुनिया से हटाकर अपने रब की तरफ मतवज्जो कीजिए और पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ समात फरमाइए। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतुओं में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। वही है मशरिक, वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। किसी को सोचूं ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो अख्तियार बशर पे पहरे बिठा रहा है, वही खुदा है। नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे। जो सबके माथे पे महरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। सफ़ेद उसका सया उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। जो शोलाए जान जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। समीन करम, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, इस महफ़िल में शामिल हो सकते हैं और अपनी आवाज़ दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। अभी आपकी समातों की नज़र अज सिख मित्रा दी वंदेरीए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरीए। सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1।

اهدنا الصراط المستقيم. इसको समझने के लिए इसका मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा। इसको समझने के लिए एक मिसाल समझने, मैंने कल आपको एक अजीब सी मिसाल दी थी। फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आके कहें आज के बाद नुमान तुम मेरे गुलाम हो, मैं कहूँ चलो ठीक है सही है। अब फ़र्ज़ करें आपने कहा मैं गुलाम हूँ, मैंने कबूल कर लिया और फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ सोफे पे आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, आपने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं कहूँ अच्छा गुलाम तो मैं हूँ, कुछ करवाना है? अगर मेरा जो मालिक है वो कुछ कहेगा नहीं कि जाओ घास काटो, घर साफ करो, खाना पकाओ, जब तक वो कुछ कहेगा नहीं तो वो मालिक कैसा हुआ? क्योंकि अगर मालिक कुछ कहे नहीं तो मैंने क्या करना है? अपनी मर्जी, उसके कहे बगैर उसके मालिक होने का, उसके रब होने का नाता पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक रिश्ता है ना, मालिक और रब और अब्द। रब जब तक हिदायत नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अहकाम नहीं देगा, कहेगा ये करो ये ना करो, ये इस वक्त करो ये ऐसे करो, इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ पे गौर करो, जब तक वो ये नहीं देगा तो फिर रब सिर्फ कहने का हो गया। मैंने मान तो लिया कि वो रब है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। ये भी होता है, मैंने ये चीज़ वहाँ US में तो बहुत कम देखी, मुसलमान कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखी। हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। तो मुझे फलाने प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया या एडवाइज़र बना दिया,

0: आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, कहते हैं फिर पकड़ते हैं फिर ऐसे देखते हैं,
1: क्योंकि उसका असल मकसद हाथ मिलाना नहीं होता,
0: हाथ मिलाने का रिकॉर्ड होना होता है, जिसको फ्रेम करना होता है।
1: अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है,
0: रब कहा है, तो रब होने का तकाजा यह है कि वो अपने बंदे को बताए मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे। अगर वो बताएगा नहीं तो रब किस बात का हुआ फिर वो।
1: तो क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा ना कि हम अब बनने को तैयार हैं,
0: इया का नाबुदो, हम आपकी मदद मांग रहे हैं, तो हमने पहली मदद क्या मांगी,
1: ए दिना हमें हिदायत दें,
0: हमें बताएं हम क्या करें। अच्छा अब तो हो गए लेकिन हमें पता नहीं करना क्या है, कैसे करना है।
1: और इस एतिना में दो पहलू आ गए,
0: दोनों इया का नाबुदू से भी मुतालिक है, इया का नस्ताइन से भी मुतालिक है एतिना,
1: यानी हमें हिदायत दें कि आपकी मदद कैसे आएगी
0: दूसरे दर्जे में, और पहली बात हमें हिदायत दें हम इबादत कैसे करें,
1: आपको खुश कैसे करें। पुराने मजाहिब में पता क्या होता था, जो बिगड़ी हुई शक्ल है इस्लाम की,
0: इस्लाम जब यू नो अंबिया लेकर आए और फिर आने वाली नस्लें उसको भूल गईं,
1: खुदा को अगर खुश करना है ना तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा,
0: वो ऐसे ही नहीं खुश हो जाता,
1: कोई ना कोई बकरी ज़बह करके उसका खून डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कोई ख़ास खाना बना के उसके सामने रखना पड़ेगा। आप देखेंगे मंदिरों में और जगहों पे क्या होता है,
0: आप वो खाना लेकर आते हैं और वो सामने पेश करते हैं, ये जी मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, ये मैंने रखा हुआ है, अब बस आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दें।
1: जब तक उस खुदा को कुछ दोगे नहीं वो आपको कुछ नहीं देगा। और ये तमाम मज़ाहिब में, यहाँ तक कि कुछ मज़ाहिब में तो इतना एक्सट्रीम था कि जंग होने वाली है और हम जीत नहीं सकते जब तक फलानी जो जो देवी है उसकी मदद नहीं आएगी, उस देवी को खून की एक कुर्बानी चाहिए, तो हमारी जो सबसे यंग लड़की है उसको कुर्बान करके पहाड़ी से फेंक दो फिर उस देवी की मदद आएगी।
0: अपनी बच्चियों को वो ज़बह करते थे उस खुदा की मदद लेने के लिए, क्यों, क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता और खुदाओं के साथ और देवियों और देवताओं के साथ जो रिश्ता था ना वो था एक तिजारती रिश्ता, ट्रांजैक्शनल, हम कुछ देंगे फिर वो कुछ हमें देगा।
1: फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी नेमतें बताएं,
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया कि उसने किया है,
1: उसने हम के मुस्तहिक चीजें की हैं खुद,
0: फिर उसके बाद अर रहमान अर रहीम, हमने कुछ किया है भी कि वही कर रहा है,
1: वही कर रहा है, यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई,
0: हमने कहा मेरे रब हम क्या करें, आपने इतना कुछ कर दिया अब हमसे भी तो कुछ करवा लें,
1: हमारे नाम क्या खिदमत है, और वो क्या है, एहदिना
0: एहदिना, हमें कुछ तो कह दें,
1: आप मुझे ये बताएं हम जितना भी कर दें अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है
0: ना।
1: तो ये एहदिना में भी जो अल्लाह ताला हम से जो हम हिदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम से कम हमारे रब हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक तो अदा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, आप हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो बता दें वो क्या होगी। यह है एहतिना। और फिर एहतिना के अंदर अगर कहा होता मुझे हिदायत दे दें, एहतिनी एहतिनी अस्सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हमने एहतिनी नहीं कहा, क्या कहा है, एहतिना। अच्छा शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करता हूं दिल से तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा होता, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ,
0: अपने बारे में।
1: जब मैं अल्लाह के बारे में कहता हूँ अर रहमान अर रहीम, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका मेरा मेरे लिए ख्याल है, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ,
0: अपने बारे में, इनफरादी बात है।
1: मालिक योम दिन मुझे आपकी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है,
0: अपनी फिक्र होती है।
1: अभी तक जो सारी बात हो रही थी वो फर्द की थी, मेरी थी, तो यहां तक जो बात पूछी तो मुझे कहना क्या चाहिए था, तवक्को क्या थी,
0: मुझे हिदायत दें। अभी तो बात हर

0: बात का इशारा मेरी तरफ वापस जा रहा है, मैं रब, मैं अब्द हूँ, लेकिन इबादत की और हिदायत की जो तलब हमने की है वो इकट्ठे की है। इसमें भी एक बात की तरफ इशारा है कि ये हिदायत अकेला इंसान नहीं कर सकता, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए, हमें इकट्ठे हिदायत दें। और इसमें एक खुद गर्जी से भी निकाल दिया हमें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, बाकी भाड़ में जाए बस मैं और तू। नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की फिक्र करना भी सिखाई। अगर मेरे रब में इतनी रहमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना ख्याल है, और उसने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ झलक तो आएगी ना, कि मुझे भी किसी और का ख्याल है, मुझे किसी और से भी मोहब्बत है। और जो चीज़ मैं अपने लिए इतनी बुरी तरह चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं सबके लिए चाहता हूँ। यह आखिरी जो जो तामुल है, इसके बाद मैं आपको ब्रेक देने लगा हूँ, ज़रा सोचना इसके बारे में। अगर इसका मफहूम आप वाकई समझे हैं, मुझे हिदायत दे नहीं कहा, हमें हिदायत दें कहा है, अगर इसको वाकई हम समझते हैं, इसका मतलब पता है क्या है? मुझे औरों के लिए क्या चीज़ चाहिए? जो हिदायत मुझे अपने लिए चाहिए, वही हिदायत मुझे उसके लिए चाहिए। और जिस नरमी से और जिस नरम दिल से मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ ना, उसी नरमी से मुझे किसी और के लिए भी हिदायत चाहिए। तो जब आप किसी को बड़ी नफरत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, जब आप ये लोग तो जहन्नमी है, जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं, काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने उधर, जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इतना की रूह से सही है कि नहीं? अगर वाकई इतना समझे हो और कोई बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है, इस फातिहा के पढ़ने में आपने उसके खिलाफ दुआ की है कि उसके लिए दुआ की है? उसके लिए दुआ की है, उसके लिए। और जिस जज्बे से अपने लिए दुआ की है, उसी जज्बे से उसके लिए दुआ की है। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे हिदायत दे और उनको भी दे दे फिर भी हाँ चले उनको भी थोड़ी बहुत। एक दिन हम सबको इकट्ठे एक जैसे, जो मैं अपने लिए चाह रहा हूं और जिस तरीके से अपने लिए चाह रहा हूं, उसी तरीके से किसी और के लिए भी चाह रहा हूं। हमारा आजकल, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ऐसा दौर इंसानियत पे गुजर रहा है कि हम एक दूसरे के अफकार को, एक दूसरे की बातों को अब दुनिया के हर कोने में इस तरह सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन सकते थे। इसी तरह इस्लाम और इस्लाम से मुतालिक जो बातचीत हो रही है, वो अब जिस लेवल पर हो रही है और जितनी ज़्यादा हो रही है, पहले कभी नहीं हो सकती थी, राइट? हर तरह के लोग हर तरह की बात इस्लाम के बारे में भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक जायजा मेरा क्या है कि अक्सरियत बात जो इस्लाम के बारे में हम करते हैं ना, वो हम किसी और की तनकीद करते हैं। अक्सरियत ये गलत इसलिए है, फलाना गलत इसलिए है, इसकी बात इसलिए नहीं सुनो, इसको इस तरह गलत साबित करूंगा, इसकी इस तरह धज्जियां उड़ाऊंगा। और फिर वो जवाब में क्या कहता है? अच्छा मैं गलत हूं, मेरी वीडियो देखना कि तुम कितने गलत हो। और एक दूसरे की गलतियां, और ये दोनों फिर गलत वीडियो, एक दूसरे की गलतियां वीडियो रिलीज करने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है और दोनों इकट्ठे खड़े होकर कहते हैं अपने अपने घरों में दिन सिरातुल मुस्तकीम। आयत का मजाक नहीं बना लिया हमने? और ये कोई बहुत गहरी तालीम है जो बहुत बहुत कुरान पढ़ने के बाद कई सालों बाद जाके समझ में आएगी, तो पहले सफ़े पर है यार। ये तो जब आपने इस्लाम कबूल किया था तब से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि मुझे बाकी इंसानियत की फिक्र है, मुझे उनको गलत साबित नहीं करना, मुझे उनके लिए भलाई चाहिए। और जो रहमत मुझे अल्लाह दे रहा है, उसी रहमत का तकाजा है कि मैं लोगों के साथ भी रहम से, मोहब्बत से, इखलास से, खलूस से बात करूं। और अगर बिना वाकई किसी के साथ इख्तिलाफ है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी गुमराही में पड़ के है, मुझे फिक्र है क्या करूं, वीडियो बनाऊं उसके बारे में? अगर आपको किसी की फिक्र हो, अपने कजन की फिक्र हो कि वो किसी गलत रास्ते पर चढ़ गया, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे कजन की? मेरा कजन जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो शराब पीना शुरू कर दी उसने, और मुझे उसकी बहुत फिक्र है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उम्मीद है कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा। अपलोड। या आपने उसके साथ मोहब्बत की है या उसके साथ नफरत की है? ये नफरत नहीं है। अगर वाकई उसकी फिक्र है तो क्या करते? उसके घर जाते, उसे गले लगाते, उसे साथ बिठाते, उसे कहते मेरे भाई हो तुम, क्या कर रहे हो, नहीं करो ऐसे, कब शुरू हुआ ये, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आओ मैं तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाता हूं, किसी से बात नहीं करूंगा, ये तुम्हारे मेरे दरमियान है। और ये किस चीज का तकाजा है? मोहब्बत का। एक तरफ तो खुतबा हो रहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ अपने भाई के ऊपर वीडियो बन रही है। भाई से बात कभी की है? नहीं नहीं नहीं। और फिर दूसरी बात, बात भी करोगे ना, और कोई कहे कि नहीं मैं उससे खुद बात करूंगा, उन लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं आप उससे खुद ही बात करें, हाँ मैं करूंगा बात उससे, वो बात करो, बात को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के करो। दिस इज एहदिना नाउ, ये नया एहदिना है, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन एहदिना। अगर मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान फातिहा पे गौर कर लेना तो उम्मत की शक्ल बदल जाए, हमारा पूरा डिस्कोर्स बदल जाए, किस किस्म का हम मवाद तैयार करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, हमारा उसलूब क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या, सारा का सारा बदल जाए। और अभी हम इस आयत में दाखिल नहीं हुए, सिर्फ इसका मैं ताल्लुक दिखाना चाह रहा था पिछली बातों से, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हमने अल्लाह से दावा किया ना कि हम इबादत करने को तैयार हैं और हम मदद चाह रहे हैं, तो कैसी मदद हो और कैसी इबादत करनी हो उसके लिए अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे अपनी हिदायत दें। ओके, दो सवाल थे, इसमें से एक मुझे याद आ रहा है इबादत के बारे में, इबादत के कॉन्सेप्ट के बारे में, इय्याका नअबुदु। क्योंकि इस आप सबको इल्म होगा कि जो हिदायत हमने मांगी है इस सूरत में उसका जवाब बाकी कुरान है, यानी उसके जवाब में अल्लाह ने हमें ये पूरी किताब दी है, तो इसका मतलब यह होगा कि इबादत, इसकी तमाम तालीमात को इबादत ही समझा जाएगा, और इसकी तालीमात में नमाज शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, ज़कात शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, रोज़ा शामिल है, हज शामिल है, लेकिन इसकी तालीमात में तदब्बुर भी शामिल है, इसकी तालीमात में सोचना भी शामिल है, सीखना भी शामिल है, इसकी तालीमात में गौर करना, तारीख़ के बारे में सीखना, इसके बारे इसकी तालीमात में जज्बात को समझना, मुख्तलिफ जज्बात को समझना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुश्किल से गुज़रे उस पर गौर करना, यानी इबादत का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत वाज़े होती हैं जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, लेकिन इस कुरान ने उस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा बना दिया। लोग आम तौर पर कहते हैं आपको कुरान हमेशा अमल में लाना चाहिए, एक एक आयत को आप अमल में लाएं। मेरा सवाल यह, आप अलिफ लाम मीम को अमल में कैसे लाएंगे? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही अमल में कैसे लाएंगे? अमल में लाने की वो आयात हैं जिनमें अमल का मुतालबा है, और आयात में तदब्बुर का मुतालबा है, सोचने का मुतालबा है, दिल के लरजने का मुतालबा है, मुख्तलिफ किस्म के मुतालबे हैं, हर मुतालबा अमल नहीं है, अमल तो एक पहलू है इबादत का, लेकिन इबादत के और बहुत सारे पहलू भी हैं, और क्योंकि बाकी मज़ाहब में उन सबको अलग अलग कर दिया गया, फ़लसफ़ी और हो गए और इबादत करने वाले और हो गए और अहकाम पे ज़ोर करने वाले और हो गए और जो है रूहानियत को समझने वाले और हो गए, उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट खोल लिए। कुरान ने क्या किया, उन तमाम चीज़ों को हमेशा इकट्ठा रखा और एक को दूसरे से अलग नहीं होने दिया, और यही असल इबादत है, असल इबादत ये है। और ये कॉन्सेप्ट इबादत का कमज़ोर होता चला जाता है जब हम अल्लाह ताला के कलाम से दूर होते चले जाते हैं। जितना आप उस पर गौर करोगे आपका कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं होगा, जितना उससे दूर होते चले जाओगे इबादत के कॉन्सेप्ट में कमज़ोरी और कमी आती चली जाएगी, यहाँ तक कि इस मकाम तक पहुँच जाएंगे कि हम कहेंगे, किसी के बारे में कहेंगे इबादत कर रहा है इसका मतलब ये नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो कमाई कर रहा है अपनी फैमिली के लिए तो ये नहीं कहेंगे इबादत कर रहा है। राइट, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की तैयारी कर रहे थे वो इबादत कर रहे थे, لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے. جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے. تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا, اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. خیر, تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد, میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا, ہم نے آپ کی عبادت کی, ہم نے آپ کی مدد مانگی, یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا, لیکن مضارع استعمال کیا ہے. مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا, یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے. تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے. ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے, ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے, اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ بھی صحیح ہوگا, مانگتے رہیں گے. تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی, مستقبل کی, ان الفاظ کے ذریعے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوکے, دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے, کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات, جمادات, پرندے, جانور, جنات, تمام عالم, تمام دنیائیں, تمام جہانوں کا مالک نا, تو اس کی طرف اشارہ ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ, جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا, تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی. انگلش میں سمجھ لیں, پرائمری میننگس, سیکنڈری میننگس, پہلے درجے کے معنی, دوسرے درجے کے معنی. اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے, اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے. میں ڈاکٹر فاضل صالح حسام رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں. انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے, عربی میں ہی کام کیا ہے. عراقی ہیں وہ, سامرا سے, ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں. انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر, اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکس کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے, اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے اس صورت میں. جو اوائل معنی ہیں, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں, انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا, لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں, نمبر ون پہ کس کو رکھنا ہے, نمبر ٹو پہ کس کو رکھنا ہے. میرے نزدیک نمبر ون پہ ذوی العقول, اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں, یعنی فرشتے, جن, انسان, روحیں, یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی, اس دنیا میں یا آخری میں, اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس سورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے, اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے, اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینی چاہیے جو اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے. تو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے معنی کو پہلے درجے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, خیر.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Jis tarike se insaan mangta hai na, usse pata chal jata hai usko kiski kitni zarurat hai. Aapke bachche aapke paas aake kehte hain mujhe 500 chahiye, mujhe 1000 rupaye chahiye. Jis tarike se mang raha hai, mangne dene ka dil nahi chahta. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کا تمیز سے پوچھا جاتا ہے, ادب سے پوچھا جاتا ہے, اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں, اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں. اے دل سراط المستقیم.